15 रुपया नोरा ये लड़के नंबर ले रहे हो कि अपन बहुत मरवाई हुआ सिरा कह गया तो कौन तेरे उन करे करे वो अंदाज़ यो आई बुकिंग ने तो पहने नोरा रा ते रोगरों को ने पहन मायो ते पे ते पे के आओ ऐसा ना पे।